0: हाँ देरी ना, बिल्कुल देरी पहुँचे हाँ बहुत ही क्या ना ये जंतुली कौन ना हाँ बिल्कुल ना ये जंतुली यही नहीं क्या हाँ कलंक रहे ना कौन ना रख रहे सामना करा जना करना उरें जिद्दे बाप देखने देखती ना हाँ दरा हंसे बात कर बिना बोलो हाँ कहता हूँ ना ना ना हाँ तेरे को लगता है तारा ना मौसारी हाँ ओ बदर ना हाँ तो इन्हीं दवान ना ये तेरे को दवान ना ये रिंजी ना को हाँ ये रिंजी ना तरन वन्या चलेंगे ना ता नहीं निकला हाँ क्यों ना तरन वन्या इन्हीं पात्रों को ना हाँ हालू मरा था ना तर रिंजी तू रिंजी ही ना कौन ना चीज़ जी चीज़ ना इधर नहीं दबो दबो ना अल्ला तो दरवाज़ा इन्हीं दबा औरों की रिंजी ना माफ़न दावा दाना कोस्तो हाँ गुड़ भी ना माफ़न है ना फ़रन करमान्या पत में चिल्ले में ना माफ़न तो इस तरीके में तो मारा कराने गए माफ़न अल्ला माफ़न हाँ माफ़ दर देना माफ़न
1: அதான் சார் நம்ம மரம் காணுங்க.